देखो आप दीदी बड़ी अपार बख्शिश के पाई मेहर हुई है। अमृत वेले संगता नु जागण दा बल बख्शा, गुरसिखी वाला जीवन बख्शा है। धन गुरु नानक देव पातशाह जी हो जिन्हां संगतां च हाजरियां भरदे होयां गुरु के सिखां ने माई भाई बच्चिया ने गुरु के शब्द नु अपनी कमाई नु सफल करदे होयां माया अरदास कराई। गुरु नानक देव जी पातशाह जी हो साध संगत दी माया सफल करनी, गुरसिखी वाला जीवन बख्शना ते अपना मेहर भरिया तरना सचे पातशाह दाता जीओ ते धन गुरु कलगीधर पातशाह जीओ जो आप जी ने बख्शिश मेहर कीती है शक्ति बख्शी है। सिंह साहब जीओ सरदार हरभजन सिंह दे जोगी साहब दी जो ए गुरसिखी दा बूटा लाया है, आप इसे तरह गुरसिखा नु चढ़दी कला च रखना है। दाता जीओ अपना बख्शिश भरिया मेहर भरिया तरना है, पंथ दे अंग संग साहित्य होना है ते इसे तरह सिंह साहब नु आप बल बख्शना, निम्रता गुरसिखी वाला जीवन ते चढ़दियां कला च रखना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहिब दा पाठ।

0: सब दुख भरो।
1: नानक शरण पड़ो दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा।

सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके ते जेड़ा सतगुरु गरीब नूं आए सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउण वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सतसंग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहिंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं। गरीब नवाज साहब फरमान कर

हर जस सुनते बात लवे। गोबिंद सिंह वह जमपुर जावे ते गुरसिख अमृत वेले उठिया। अमृत वेले उठ के सतगुरु जी दी हजूरी अंदर पहुंचया ते गुरु की संगत अंदर बह गया। गुरु की संगत विच बैठिया होया सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दे पावन बचन सुनदा नहीं, बल्कि नालदियां नूं भी नहीं सुनन दिंदा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ऐसे गुरसिख प्रथियाए लिखदे ने भाई, हर जस सुनते बात चलावै। हरी परमात्मा दी बाणी सुनदियां, हरी परमात्मा दी कथा हो रही होवे, हरी रब परमात्मा दी गुरबाणी दा कीर्तन हो रहा होवे, ते हर जस सुनदियां आपो विच गल्लां करदे रहन। गल्लां बातां करन वाले गुरसिख नूं महाराज कहंदे हन, उसने जन्म व्यर्थ गवाया, सतसंग विच बह के दूजे दा भी समां बर्बाद कीता। ऐसे गुरसिख नूं जमां दी मार पैंदी है।

गुरु का दिता होया निशान केसां दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसां दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैणी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिए ओ मुख पवित्र होना चाहिए भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करे क्रोध, कन्या मूल ना देवे सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है उस पुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सा पुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको जिहा प्यार दे।

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बन्नी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु अज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु अज कहंदे ओ मेरा सिख नहीं जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़िया दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु अज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती।

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। आई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा बल्कि प्यार करेगा।

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होया।

नंद लाल जी मैं वचन कहने ना गुरसिखां नूं, इह गल नहीं वी केवल गुरसिखां वास्ते ही ने, भाई जिहड़े गुरसिखां ने अमृत छकिया है मैं इन्हां नूं वाक दित्ते ने। मता तुहाडे मन अंदर कोई ख्याल आ जाए वी साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इतनी करड़ मर्यादा दित्ती, सख्त मर्यादा दित्ती है, इस करके मैं आप जी नूं अपना भी एक वचन दसना जो मेरे पूरे पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने मैनूं बचपन च दित्ता।

मेरो दर्शन नाहे ते पापी त्यागे देख। वो ते अपने आप नु सिख ना मनन जिन्हां ने केस मनाए हुए ने, मेरे ता सिख ओ भी नहीं जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, जिन्हां ने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण कीते हुए ने ते सबना मोहरे आके बहन दा दावा करदे ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी दा याप जाप करदे ने, पर आप पगाउंदे नहीं। केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वह भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहजधारी ने, जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने भी केस मना के भी गुरु के सिखां सिखी अंदर है, वह मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नूं आज सच्चे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने यह वाक गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प कीता गरीब नवाज, समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि यह रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। ये गरीब नवाज कहन लगे, नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा, ते जदों ये भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इसनूं राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे पवित्र होवे ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन रहत बिना ना सिख कहावै रहत बिना दर चोटां खावै रहत बिना सुख कबू ना लह। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्होंने तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज उन्हू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो उन्हू छेक दिता जावे जड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया भाई देसा जी ने लिखिया बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। ते गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमा

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलदे ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरा ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुर ते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुर ते इहदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इस दी बंदश है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

विकसित हो रहा है। भारतीय संगीत विच इस राग का किते भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। माझ राग भारतीय संगीत नूं गुरु साहबान दी अनुपम देन है। आत्मिक सफर तय कर दी माझ विच लंघ दी आत्मा हूक कढ़दी है, हेक लगाउंदी है, विछोड़े दी कसक महसूस करदी होई मेरा मन दोचै गुर दर्शन ताई बिलब करे चात्र की न्याई दा विरलाप करदी है। गुरु अर्जन देव जी दा बारहवां भी इसे राग विच है। निरोल पंजाब दा राग होण करके इस विच भगतां दी बाणी नहीं है। इस राग विच दोनों गंधार अते दोनों निषाद लगदे हन, बाकी सारे शुद्ध स्वर लगदे हन। इस दा वादी रे संवादी पा है, गायन समा शाम दा संधि प्रकाश मन्निया है। लो हुण सरवण करो माझ राग विच दो शब्दां दा गायन। पहला शब्द गुरु अर्जन देव महाराज जी दी रचना है अते कीर्तन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। अते दूजा शब्द जिसनू गायन कर रहे हैं प्रोफेसर हरचंद सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता। पहला शब्द पेश कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी।

ओतना बारंबार जो बंसल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा जो बंसल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा गुर सेवा ते पद कमाई तब ए मांस दे ही पाई मानस जन्म अमूल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई सब ए मानस दे ही पाए इस दे को सुरे देव सदेगी पज हर किसे पजो गोविंद भूल मत जाओ पजो गोविंद भूल मत जाओ मन सिम का ही लाओ

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारे पानी अपना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना भजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए तेरे अवसर ए तेरी बार।

साधो एतन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देवरिया गोविंद मिलन की ए तरी बरिया।

गोविंद भजन बिंद थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिंद थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत बहुते जुगहारे हो फिरत

कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म पंखी सर्प होयो।

चिटके से फिटे गुरु बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कुआरे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुर चौथी

हमारी जेहबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगाह।

हमारी जय बा एक प्रभु, जय बा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाहे। जय बा एक कवन गुण कहिए, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने। कवन गुण कहिए, जेबा एक तू समरथ वडा, मेरी मत थोरी राम, मेरी मत थोरी राम। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, मत थोरी तू समरथ वडा, वड्डी हूं वड्डी।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम वद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुठे मेल मिला हर कृपा।

कौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना कर दी है, आपे दी खोज कर दी है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयों विच गुरबाणी उच्चारण की थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे, पाने चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा राग दा प्रथम पहर। पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे।

जियां अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे बस, तेरा घर भला, तेरे घर आनंद बधाई तुद कर, माण महत्ता तेज अपना आप जर, सर्कला भरपूर।

पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़िए खात पड़िए जेते वर्ष

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडल कूड़ माड़ी कूड़ व्यसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा।

0: कहूं महाराजन से छिन छेत लेत हो, कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं ते गुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो।
1: ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों ते सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा, कतों अचेत होके सुत्ता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा, कहूं महाराजिया नूं दान देंदा फिरदा ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजिया कोलों धरती खो लैंदा, किते ओ वेद दा रूप बन जांदा, किते ओ तिन्ना गुणा दा रूप बन जांदा, किते ओ सर्ब गुणा दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेडे जागदी रूप जागदी जोत है, ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहब विखे सुशोभित हन। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाना जो महाराज साहब जी दा अतल अस्थान है, उत्थे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हन। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता है गुरु ग्रंथ साहिब अंदर, सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता है। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा, संसार दे पदार्थ मिले लभणगे, बड़ियां बड़ियां वस्तुआं इस दे विचों लभणगियां, साइंस इस दे विच है, संसार दी फिलासफी इस दे विच है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर केवल नहीं थां ते एक चीज नूं नहीं, के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर झूठ नूं थां नहीं, इस दे विच झूठ नहीं है। केवल संसार दी एक वस्तु नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओ झूठ नहीं, बाकी सब वस्तुआं संसार दीआं लभ लो इस दे विचों, पवित्र स्वरूप है जागदी जोत है, इस दे विचों जिहड़ी वस्तु लभोगे, क्योंकि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बड़े बड़े पदार्थ ने, लभण दी लोड़ है, लभ जाणगे मिल जाणगे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसा पावन गुरु है। आओ क्योंकि 8 बजे समाप्ति करके उदो बाद आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी, ते सेवा करनी है शुद्ध मन नाल। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, रसना दे उपर साडे ए पंक्ति होवे, शीश उपर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र सवारा होवे, ते कहिए महाराज तू ते मुक्त है, सानू मुक्त कर दे, असी मैलां दे भरे होए हां, पापी जीव हां, सानू मुक्त कर सतगुरा, तेरा पवित्र स्वरूप जिस दे शीश दे उपर आ जावे उस दे अंदर संसार दीआं मैलां रह जान, महाराज तू मुक्ति दा दाता है, आप मुक्त मोहे तारे, मैनू तार लै संसार दे बंधना तो मुक्त कर दे। पूर्ण श्रद्धा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, हाथ सुचे करके जोड़े ला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदासा करके, भई अज पवित्र गुरु दा संग हो रहा, पूर्ण गुरु दा संग हो रहा, किते महसूस करो, किते यार दे दोस्त दे नाल जिंदगी बतीत करनी होवे ना, किसे यार दोस्त दे नाल एक पल भी बतीत करन विच आ जाए बड़ा सुकून मिलदा है। अज गुरु दे नाल वेखिए भी ए सतसंग कीता होया किन्ना सफल हुंदा है, किन्ना सुखदायक हुंदा है, किन्ना रिलैक्स मिलदा है, किन्नी साडी जिंदगी दे अंदर परिवर्तन आउंदा है। आओ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो बलिहार जांदे होए